ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि यह भारत सरकार के होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का जीवंत प्रमाण था, जहां पॉलिटिकल विल और मिलिट्री पावर ने आतंकियों पर एक साथ निर्णायक प्रहार किया। हमारी सेनाओं ने अद्वितीय समन्वय, साहस और सटीकता के साथ यह सिद्ध कर दिया कि जब आवश्यकता पड़ती है तो हमारी सेनाएं किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देना जानती हैं। यह ऑपरेशन इस बात का सबूत है कि नया भारत हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठता, बल्कि पक्की रणनीति, मजबूत संकल्प और पूरे सामर्थ्य के साथ दुश्मन को उसकी भाषा में ही जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट कर दिया, जरूरत पड़ने पर भारत न तो समय देखता है और न ही कोई सीमा। भारत अपने द्वारा तय की

0: गई समय सीमा में दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने की ताकत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर केवल दुश्मनों पर जीत की कहानी नहीं बल्कि उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जहां 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति हमारे सैनिकों के साहस में बदल जाती है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक संकल्प नहीं बल्कि हमारी सैन्य शक्ति का आधार बन चुका है। स्वदेशी तकनीक, अपने संसाधनों और अपने संकल्प के बल पर भारत आज न केवल अपनी रक्षा कर रहा है बल्कि दुश्मनों पर डिसाइसिव एज भी बना रहा है।
1: इंडिया हैज फेस्ड रिलेंटलेस टेरर अटैक्स फॉर ओवर 3 decades. These attacks have been sponsored by Pakistan. As part of its state policy, Pakistan has recruited, trained, equipped and assisted terrorists to undertake attacks in India through terror organizations, including Lashkar-e-Tayyiba and Jaish-e-Mohammed.

पताकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।

0: ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि यह भारत सरकार के होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का जीवंत प्रमाण था, जहां पॉलिटिकल विल और मिलिट्री पावर ने आतंकियों पर एक साथ निर्णायक प्रहार किया। हमारी सेनाओं ने अद्वितीय समन्वय, साहस और सटीकता के साथ यह सिद्ध कर दिया, जब आवश्यकता पड़ती है तो हमारी सेनाएं किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देना जानती हैं। यह ऑपरेशन इस बात का सबूत है कि नया भारत हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठता, बल्कि पक्की रणनीति, मजबूत संकल्प और पूरे सामर्थ्य के साथ दुश्मन को उसकी भाषा में ही जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट कर दिया, जरूरत पड़ने पर भारत न तो समय देखता है और न ही कोई सीमा। भारत अपने द्वारा तय की गई समय सीमा में दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने की ताकत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर केवल दुश्मनों पर जीत की कहानी नहीं बल्कि उस आत्मविश्वास का प्रतीक है, जहां 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति हमारे सैनिकों के साहस में बदल जाती है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक संकल्प नहीं बल्कि हमारी सैन्य शक्ति का आधार बन चुका है। स्वदेशी तकनीक, अपने संसाधनों और अपने संकल्प के बल पर भारत आज न केवल अपनी रक्षा कर रहा है बल्कि दुश्मनों पर डिसाइसिव एज भी बना रहा है।
1: India has faced relentless terror attacks for over three decades. These attacks have been sponsored by Pakistan. As part of its state policy, Pakistan has recruited, trained, equipped and assisted terrorists to undertake attacks in India through terror organizations, including Lashkar-e-Tayyaba and Jaish-e-Mohammed.